प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हैं हमको, शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्चे सच्चे गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है,
कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंथता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंथ के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भगवती का रस बह जाएगा। और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे। शांति से जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव, शास्त्र को तुम क्या समझोगे? तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है? होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो का रंग बरस रहा है? काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भेजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर अब दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुद छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसी पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं।
कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत में से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणुश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वंत कुर्वंत मा गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारे वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा।
जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बोले? रूप माधुरी ध्यान समावे। हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। शांत, अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा। हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया। भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है। अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मनुस्मरण, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।

0: अब यहां वृंदावन में एक कदम चले, तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है। जैसे अपार महिमा, देखो जैसे दूध पीने से सद्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है, हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है, इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है, जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं? ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ अंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हा लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोल, बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो? हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देती हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है, और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज

0: और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाए तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे

0: भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: हैं।
1: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी

0: मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मींस जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
1: नहीं,
0: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
1: कई बार मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर मैं ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई देखिए, वीक का वेडनेसडे आ गया है। मतलब सिंपल सा है, मंडे का शौक और ट्यूसडे की थकान, दोनों से चल रही है रिकवरी बराबर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वीकेंड अब दूर नहीं है ज्यादा, कुछ दिनों में वीकेंड भी आ जाएगा। थर्सडे फ्राइडे वाली बात है, और उसके बाद ना आप सैटरडे संडे चिल करना, जो करना है यार वो करना, क्योंकि ना वीकेंड का इंतजार जितना बेसब्री से आप करते ना, उतना ही बेसब्री से मैं करती हूँ। लेकिन मेरे तो वीकडेज भी बढ़िया होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपसे बातें करने का मौका जो मिलता है ना। डेली आती हूँ सुबह 7 से 11 मंडे टू फ्राइडे, आपके साथ बैठती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, ये बताती हूँ आपके अपने शहर में आज ट्रैफिक क्या कहने वाला है, साथ ही अगर बात की जाए वेदर की तो वेदर कैसे रहने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आती हूँ। तो आज भी बहुत सारी बातें लेकर आई हूँ, इस वेडनेसडे को बोरिंग वेडनेसडे तो नहीं बनने दूंगी। तो भाई करना क्या है, एंजॉय कीजिए ना ये ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, फरीदाबाद से निकल कर चलते हैं थोड़ा सा बाहर। और जैसे मैं बाहर गई ना, तो मुझे ये पता चला कि जो चीजें हम एज इंडियन सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और जिनके हमारी बहुत ही यूनिक यूनिक नाम भी है, उन्हें ना बाहर के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब बात कर लो मम्मी की थाली की। हाँ, वही किचन वाली स्टील वाली थाली जिसमें हम ना सालों से दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल और कुछ भी खा लेते हैं। और कई लोग तो ना उसमें चाय भी पी लेते हैं, बिकॉज यार हम इंडियन ना बहुत जुगाड़ी होते हैं, और साथ ही ना कभी कभी इतना आलस भरा होता है कि कौन जाए ग्लास लेने। ये जो थाली है ना, मल्टीपर्पज वाला काम करती है। लेकिन जिस थाली को हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, और जिसका इस्तेमाल करते करते हम इतने ज्यादा बोर हो गए थे ना कि मम्मी को ये बोला कि यार अभी से रिजेक्ट कर दो, और ये जो फैंसी क्रॉकरीज आ रही है ना मार्केट में वो ले आओ। लेकिन आपको बताए, एक विदेशी महिला अमेरिकन विमेन ने स्टोर पर एक क्रोम प्लेट्स को देखा, और ना उसका दिल उस प्लेट पर आ गया। और उसका प्राइस पता क्या था? 800 से 1500 रुपए पर प्लेट। जैसे उस लेडी ने देखा कि भाई ये तो बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही, तो उन्होंने बोला मुझे दे दो। तभी दुकानदार ने बोला, मैडम जिसे आप क्रोम प्लेट समझ रही हो ना, ये हमारे घर की थाली है और हम सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी कि इतनी हाइप बना दी उस थाली की जिस थाली को हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मम्मी के दहेज में ना यही थालियां मिली थी, और आज तक मेरे घर में यही थालियां चल रही है। मेरी मम्मी इनको रिप्लेस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हैं, जिसकी वजह से ना मेरा घर कभी एस्थेटिक नहीं बन पा रहा। खैर देखिए, मेरा घर तो स्थैटिक नहीं बन पाया, लेकिन ये जो अमेरिकन लेडी है ना, ये अपना घर जरूर स्थैटिक बना लेंगी, वो भी हमारी थाली के साथ। और तब तक ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ, तो भाई सुनने पड़ेंगे ना ये गाने। तो सुनिए, मिलते हैं उस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। वार्म अप एटलीस्ट 5 टू

मिनट्स मिनिमम होना ही चाहिए रनिंग से पहले। उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें।

कई लोगों में ना एक चुल होती है, और वो चुल ये है कि उनसे अपनी हॉबी भी नहीं छोड़ी जाती और जॉब भी नहीं छोड़ी जाती। जॉब करनी इसलिए बिकॉज भाई ये गरीबी है, ये पापी पेट का सवाल है, और इस पापी पेट को ना पिज्जा बर्गर और गार्लिक ब्रेड तो चाहिए ही होती है, और हॉबी तो दिल, ये जो दिल है ना उसके अंदर बैठी हुई है हॉबी। तो भाई दोनों चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, तो अब आपको करना क्या है? तो एक गोल्डन रूल है हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पगलू है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये जो आपका दिली तमन्ना, ये जो आपकी हॉबी है वो जिंदा रहे, तो सबसे पहले ना अपने बॉस को इम्प्रेस कर दो। अगर आप गाना गाते हो ना तो बॉस को सुबह शाम जाके गाने सुनाओ। अगर आप डांस करते हो तो बॉस के सामने ठुमके लगाओ। और अगर आप पेंटिंग करते हो ना तो भाई सबसे बड़ी चीज बॉस का फेस पेंट कर दो। नहीं, बॉस का फेस पेंट नहीं करना, कैनवस पे भाई। तो देखिए भाई, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोशल स्यापा आज का लेकर आ गई, तो आज का स्यापा हमें ये बताता है, ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तो भाई जिस बंदे ने गोल्डन रूल्स बताया ना, उसने ये बताया कि अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने हॉबी को जिंदा रख सको ऑफिस में, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि जब भी आपका बॉस आपको टारगेट करे ना तो आपके काम के ऊपर तो कतई ना कर पाए। और इसी के साथ आपको कम्प्लीट करना है आपका KRA और KPI, सो दैट कि आपका टारगेट, आपकी परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट हो और बॉस को ना कम्प्लेन करने का मौका ही ना मिले। जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ आई है ना, वो ये है कि अपना सिर्फ काम पूरा करो यार। अगर वो काम पूरा नहीं करोगे ना तो ऑब्वियसली यार बॉस गुस्सा करेगा गई। ये सेम ना उसी स्टूडेंट की तरह जो बेचारा बैक बेंचर है और अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करते और एक्सपेक्ट करता है कि स्कूल में टॉप कर ले। तो भाई देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो अपनी हॉबीज को अगर जिंदा रखना है ना बॉस, अपना काम पूरा करो। और साथ ही सुनते रहो ये ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा? सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जी बिल्कुल, आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है। और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हाँ जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, बहुत सारी बातों के बाद में अब मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ आज का बिजनेस मंत्र। ये बिजनेस मंत्र ना हमें साइड इनकम देता है, यानी कि ये बताता है कि आप 9 to 5 के साथ ना एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। करनी कैसे? देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा आज मैं आइडिया लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। और आज का मंत्र है होम मेड ब्रेकफास्ट सब्सक्रिप्शन। देखिए, जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं ना, ये बेचारे ना घर के खाने के लिए तरस जाते हैं, खासकर वो गर्मा गर्म आलू का पराठा, दही, खीर, मतलब बहुत सारी चीजें यार जो मम्मी हमारे ब्रेकफास्ट में बनाती है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, एक व्हाट्सएप बनाना है और व्हाट्सएप पर ना एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप के अंदर आपके आस पास के जितने भी लोग हैं, आपको उनका डेटा लेना है। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको उनसे बात करनी है, उनको उस ग्रुप में ऐड करना है। एंड देन जो भी आपका एक मेन्यू है, आप वो मेन्यू अपना शेयर कर दीजिए, या फोटो शेयर कर दीजिए आपके खाने के, आपके ब्रेकफास्ट ही। एंड फिर देखिएगा आपका जो बिजनेस है कितना बढ़िया चलता है। तो देखिए भाई, इस बिजनेस की गारंटी तो मैं भी ले रही हूँ, ना ज्यादा खर्चे की जरूरत है। बस अभी तक जो आप अपने घर वालों को खिलाते थे, वो अब आपको बाहर वालों को खिलाना है, सिंपल। तो भाई बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही किफायती बिजनेस है, इस बिजनेस को जरूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत सारे आइडियाज मैं लेकर आती रहूंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं ना थोड़े ही देर में।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

जी फरीदाबाद की बात तो बहुत कही, चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और ये देखते हैं कि आजकल सोशल से आप हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा, जिंदगी की ना, जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है। और जब वो घर में आती है ना तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई वीआईपी होनी चाहिए। और अगर अब तक ये वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा, पार्किंग में? ना ना ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई? तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड, यानी कि ना ये कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल स्यापा ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना, तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन उन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी नहीं है। तो आजकल सोशल स्यापा मैंने आपको बता ही दिया है, और बहुत सारी बातें आज मेरे पास करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, आज डू यू नो से ना सीधा चलिए डिड यू नो पर चलते हैं। और यार मैं आज बात करूँ ना डिड यू नो की, तो बहुत प्यारा सा थॉट लेकर आई हूँ। और मतलब ये थॉट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग ना अक्सर ये सोचते हैं कि यार इस इंसान के बारे में कैसे पता चला है कि एक अच्छा इंसान है या नहीं है, कोई फेक बंदा तो नहीं है। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका मैं लेकर आ गई हूँ। अगर किसी इंसान को समझना हो ना, तो ये जरूर देखेगा कि वो जो आपके आसपास जितने भी डॉग्स है ना, सिर्फ ब्रीड्स की बात नहीं कर रही, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है ना, उनके साथ कैसा बिहेव करता है। बिकॉज एक पॉपुलर सेइंग है जिसमें ये कहा गया है, इफ अ मैन लव्स अ डॉग ही इज अ गुड मैन, एंड इफ अ डॉग लव्स अ मैन ही इज अ गुड मैन। सो भाई देखिए, यहाँ पर अगर एक इंसान किसी जानवर से प्यार करता है, किसी डॉग से प्यार करता है, तो वो अच्छा इंसान है। लेकिन अगर बदले में कोई जानवर, कोई डॉग उसे प्यार करता है ना, फिर सोचेगा वो कितना प्यारा इंसान होगा। सो भाई इसी थॉट के साथ ना, एक सिंपल सा मतलब ये है, जितने भी डॉग्स है ना, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, उनके साथ काइंडनेस और केयर दिखाना इंसान के नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिकॉज यहाँ पर इसका लॉजिक ये है, कभी आपने अगर डॉग्स देखे हो ना, तो वो आपके पास बिना किसी मतलब के आते हैं। भले ही आपका आउटफिट खराब हो, आपका मूड खराब हो, आपके पास पैसे ना हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो, जैसा कि आप समझते हो कई बार, लेकिन डॉग्स को ना इन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपको हर कंडीशन में अनकंडीशनल लव करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई डॉग आपको आकर प्यार करता है ना, तो समझिए कि आप कितने प्यारे इंसान हैं। और यही चीज ना अपने अंदर से कभी खत्म मत होने देना। और पता, दूसरों से प्यार करना, दूसरों को प्यार का इजहार करना, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके खुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत प्यारा होता है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बहुत सारी बातें करती हूँ ना मैं, सुबह 7 बजे जाती हूँ और कब जाकर 11 बज जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। और बातें बातें करते ही ना कभी कभी ना इतने अच्छे गाने होते हैं कि मैं बीच में गाने भी बजा देती हूँ। तो भाई देखिए, बातें तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन ना आज एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फील गुड स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं ना, अच्छाई छोटी हो या फिर बड़ी, किसी ना किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर लेकर आती है। और आज की फील गुड स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी सी काइंडनेस ने एक स्ट्रेंजर का पूरा दिन बना दिया। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता क्या है, इसके बदले ना किसी ने कुछ मांगा भी नहीं। तो भाई देखिए, कभी किसी के लिए आपने डोर होल्ड किया है? जब आप कभी किसी के लिए डोर होल्ड करते हो ना, तो सामने वाला आपको थैंक यू कहकर जाता है। और जब वो थैंक यू कहता है ना, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। बस वही स्माइल ना आपका दिन बना, बस वही स्माइल ना एक काइंडनेस का जेस्चर। और कभी आपके जेन्युइनली फील किया है कि किसी ने आपको ये पूछा हो कि आप ठीक हो, और जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, तब लगा होगा ना कि हाँ कोई मेरा भी है। तो भाई यही सारी चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी में ना हमें स्ट्रेंथ, हमें होप और पॉजिटिविटी देती है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में गुड वाइब्स बनी रहे, तो आपको बताए ना क्या करना है, आपको भी ये गुड वाइब्स सामने वाले इंसान की जिंदगी में लेकर आनी है। यानी कि एक छोटी सी चीज कीजिएगा, जब आप ऑफिस जा रहे हैं ना, और ऑफिस जा रहे हैं जो डब्बे में कुछ अच्छा लेकर आया ना, तो एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा अपने कॉलीग्स के लिए, अपने ऑफिस वाले पगलू फ्रेंड्स के लिए। और साथ ही अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते ना, तो यार किसी को लिफ्ट दे देना। बस ये छोटी सी चीज आज कर देना, और फिर देखेगा ये जो गुड वाइब्स आप स्प्रेड कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगा। सो इसी को कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा। और एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी, फरीदाबाद। तो फाइनली मैं आ गई हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ, बिकॉज अब टाइम हो गया दिमाग की बत्ती जलाने का। और दिमाग की बत्ती जलाने का सबसे बढ़िया तरीका है फरीदाबाद की पहेली। तो देखिए, आज की जो मैं पहेली लेकर आई हूँ ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले पहेली जान ही लेते हैं। नाम मेरा एक जानवर से मिलता है, पर जंगल में मेरा कोई ठिकाना नहीं। फरीदाबाद में मेरी पहचान पुरानी, बताओ मैं हूँ कौन। चलिए एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ शॉपिंग भी होती है और शाम भी सुहानी होती है। अब बताइए शाम शानदार करने का प्लेस कौन सा, यानी कि ऐसा कौन सा वो प्लेस है जहाँ आप जाके शॉपिंग भी करते हो और एंजॉय भी करते हो उस प्लेस को। तो आपको बताना, बताने के लिए कहाँ जाना है। तो फटाफट से आ जाइए अपने जवाब लेकर। मैं मिलती हूँ आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर देखती हूँ किसका मैसेज मुझे पहले आता है। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

यार आज ना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रही हो आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना, कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वालों को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है, तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर।

0: हां जी, और बताइए क्या हाल चाल है। देखिए हाल चाल आपका बेहतर है आई नो, और ये सुनने के बाद ना और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि आज ना मैं एक गुड न्यूज के साथ आई, और गुड न्यूज ना सीधा पहाड़ों से आई है, खासकर हमारे हिमाचल से। तो देखिए भाई, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो अब 99.55% लिटरेसी रेट के साथ देश का सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट बन गया है, और सिर्फ गोवा की अगर मैं बात करूं 99.7% उससे आगे है। ये अचीवमेंट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी ULLAS के थ्रू मिली है, जो कि स्पेशली नॉन लिटरेट अडल्ट को बेसिक एजुकेशन और फंक्शनल लिटरेसी देने पर फोकस करता है। अगर मैं बात करूँ ना हिमाचल की, तो हिमाचल अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। हिमाचल ने सोचा है और एक टारगेट सेट किया है कि 2026 से 27 में 100% लिटरेसी लेकर आएगा। तो देखा पहाड़ों से कितनी सारी कहानियां आती है, और अब पहाड़ों से ना ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशन स्टोरी बाहर आई है। 99.55% अचीव, बस 0.45% रह गया है, और ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होकर 100% हो जाएगा। तो देखा थी ना आज की ये स्टोरी, और ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन अभी वक्त हो गया है शानदार सा ट्रैक सुनने का, मिलते हैं ना कुछ ही देर में।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

इधर चला मैं उधर चला और बस इसी ट्रेंड के पीछे ना मैं भी निकल पड़ा। कितनी बार बताया है कि वर्चुअल वर्ल्ड से जितना हो सके उतना दूर रहिए, अदरवाइज किसी दिन इतनी गंदी वाट लगने वाली है ना, कभी सोचा भी नहीं था। ये जो जेंजीज है ना आजकल, सिर्फ जेंजीज नहीं भाई, सॉरी मैं यार जेंजीज को टारगेट नहीं करी, ये जो आजकल ट्रेंड वाले दुनिया के लोग है ना, ये कहीं भी अपना ट्रेंड शुरू कर देते हैं। अब मेट्रो को ही देख लीजिए, आजकल ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर मेट्रो के दरवाजों पर लोग अपना फोन चिपका कर प्रॉपर एक कंटेंट शूट कर रहे हैं और वायरल भी हो रहा है। लेकिन अब इतने ज्यादा वायरल हो गए कि ये वीडियो सीधा पहुंच गई डीएमआरसी के पास। अब डीएमआरसी ने दे दिया सीधा कंटेंट क्रिएटर को वार्निंग्स, बिकॉज जो ये कंटेंट है वो बनाया जा रहा था मूविंग मेट्रो में, विंडो पर मोबाइल फोन चिपकाकर वीडियो शूट की जा रही थी प्रॉपर, जिसकी वजह से ना सिर्फ मूविंग कोच के शॉट्स नहीं आ रहे थे, जो कंटेंट बना रहे हैं ना इंसान उसके भागने के शॉट्स भी आ रहे थे। तो भैया देखिए, अगर जिंदगी से प्यार नहीं है तो ऐसे ही बता दीजिए यार, मेट्रो का नुकसान क्यों करवाना है? अपनी सेफ्टी का तो आपको ख्याल है नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में तो सोचो ना यार, जो सिर्फ घर से ये सोचकर निकलते हैं कि आज टाइम से ऑफिस निकल जाएंगे, लेकिन आपके कंटेंट के चक्कर में ना किसी दिन वो लेट हो सकते हैं। इन चीजों का ख्याल रखिए, अगर कंटेंट बनाना भी है ना तो एक सेफ्टी के साथ फ्रूटफुल कंटेंट बनाइए, सो दैट कि अगर उस कंटेंट पे रीच और वो कंटेंट वायरल होता है ना तो देखने लायक तो बचोगे ना यार। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी यार, कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि अगर कुछ भी जरूरत है ना हमें जिंदगी में, तो वो सिर्फ गूगल ही पूरा कर सकता है। जैसे कोई नंबर चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई रास्ता कोई डायरेक्शन चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई मार्केट की कोई शॉप ढूंढनी है तो गूगल के पास चले जाओ। लेकिन कभी आपने सोचा ये गूगल भी किसी के पास तो जाता ही होगा ना? तो यार देखिए, ये गूगल आपको ले जा सकता है स्कैमर्स के पास। और यही हुआ है, गूगल पर अगर कभी भी आप किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च कर रहे हैं ना, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जेन्युइन है या फिर नहीं, क्योंकि ना अब एक और स्कैम आ गया है मार्केट में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये स्कैम बता देती हूँ। तो देखिए, आज का स्कैम हुआ है वडोदरा से। 63 इयर्स ओल्ड फाइनेंसर के साथ एक स्कैम हो गया है। फेक बैंक के एम्प्लॉय ने उन्हें व्हाट्सएप पर एपीके ऐप डाउनलोड करवाया और उसके बाद ना उनके अकाउंट से लगभग 20 लाख रुपए ठग ले गए। मतलब सिंपल सा है, उन्हें पहले एक कॉल आया, एक ऐप डाउनलोड कराया और उनका अकाउंट खाली। ये कॉल इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया था। तो बस आज यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपको जरूरत है आपके बैंक के कस्टमर केयर नंबर की, तो जाकर बैंक से ही कॉन्टेक्ट करें। उसके लिए किसी भी गूगल पर रेंडमली किसी भी नंबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये सारा खेल हो सकता है स्कैमर का। और अगर आपको आपके अकाउंट को सेव करना है ना, तो ये छोटी सी चीज है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और इसी के साथ ही स्टे सेफ स्टे अलर्ट मिलता है ना कुछ ही देर में।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेस एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हाँ जी, डू यू नो से चलिए बात कर लेते हैं डिड यू नो पर। यार ये उवासियों की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान लेता है उसे देख कर ना सामने वाले इंसान की भी उवासी निकल जाती है, यानी कि योनिंग अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो। बोला था ना, अगर बात भी कर लो ना तो आ जाती है यार। तो देखिए भाई, नींद मैं पूरी कर आई हूँ फिर भी उवासी आ गई मुझे। सो आज मैं डिड यू नो लेकर आई हूँ। अभी जब मैंने उवासी ली तो आपको भी उवासी आई गई होगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी को यौन करते हुए देखते हैं, इवन जो हवा वाली आवाज है ना, अगर आप वो भी सुन लेते हैं ना तो उससे बिना आपको यौन आ जाती है। पढ़कर भी उवासी आ जाती है भाई, क्योंकि ना इसका कनेक्शन पता है किसी चीज से है। इस योनिंग को कहते हैं कंटीजियस योनिंग। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि यार ऐसे क्यों होता है, तो बता देना कि भाई ऐसे इसलिए होता है। तो देखिए सामने वाला इंसान आपको कितना इंटेलिजेंट समझने वाला है ना। एंड आई एम डैम श्योर जब मैंने यौन की थी ना, आपने भी यौन जरूर की होगी। तो देखिए आज के डिड यू नो में यही था कि इस चीज को कहते हैं। और कल नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो bones के ऊपर mechanical stress आता है तो वो bone density maintain करने में overall help करता है। Side by side जब running हो रही है तो muscles की strength और endurance भी increase होती है, जो कि joints के आसपास mobility help करती है increase करने में और joint को stability extra provide।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी मेरे पास जवाब भी आए हैं और जवाब आए हैं फरीदाबाद की पहेली के। तो देखिए, टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए मैं ये आपको ये बता देती हूँ कि जो सही जवाब दिया है वो है श्वेता ने। अब लगता है श्वेता है शॉपिंग पगलू, क्योंकि श्वेता ने बताया अंजलि जो पहेली तुमने पूछी है ना उसका जवाब है यार क्राउन इंटीरियर्स मॉल। तो श्वेता बात बिल्कुल सही की है, इसी मॉल की मैं बात करी थी और इसी मॉल तक आप भी पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हैं और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, आप शॉपिंग पगलू बहुत ज्यादा हो, ये हमें पता चल रहा है। और इसी के साथ मैं बस यही कहूंगी, ऐसे ही फरीदाबाद को प्यार देते रहिए, फरीदाबाद को एक्सप्लोर करते रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

बहुत सारी बातों के बाद, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के बाद, बहुत सारे गानों के बाद, यानी कि बहुत बहुत बहुत करके ना मैं 7 से 11 पर आ गई हूँ। पूरे 4 घंटे आज आपके साथ ही डेली होती हूँ, मंडे टू फ्राइडे 7 to 11 AM, और बहुत सारी बातें करती हूँ। लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आखिर आज मम्मी ने ना मेरे टिफिन में क्या दिया। तो आज सुबह क्या था, रात को मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी ने आज मुझे टिफिन नहीं दिया। कि जो तुम्हारी खाना ना खाने की आदत है ना, अब इस आदत को तुम बरकरार रखो, मेरी मम्मी का ये कहना था। और जब मम्मी गुस्से में आती है ना, तो फिर बहस नहीं करनी चाहिए, फिर जैसा वो कहती है ना वो मान लेना चाहिए। तो आज मैं आई हूँ बिना टिफिन के, और अगर आज जब मैं बिना टिफिन के आ ही गई हूँ तो आज ना थोड़ा सा चीट मील होने वाला है। लेकिन आप मुझे जरूर बताइए कि आज आपके लंच बॉक्स में क्या आया है, आखिर आज आपकी मम्मी ने क्या दिया है आज आपको लंच बॉक्स में। और बताने के लिए ना आपको पता है कहाँ जाना है, फटाफट से आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर आप हमारे साथ जो भी कुछ आपके मन में है ना वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक। फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जे जे हॉस्पिटल आ रहे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

सपनों की बिना एक बहुत अच्छी कहानी है, और एक आज मैं कोट पढ़ रहा था तो मेरे को लगा यार सपने को इस तरह से भी तो देखा जा सकता है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत होती है यहाँ से नारी नंबर वन शो की। और कोट बताएं कुछ इस तरह था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोते समय जो सपने आ रहे हैं वो सिर्फ वो हैं जो आपके माइंड में चीजें पूरे दिन की क्योज और सारी चीजें आपके माइंड में रह गई हैं, या कुछ लोगों की यादें रह गई हैं। बट असली सपने और असली अचीवमेंट वाले सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए आप रातों में उठ रहे हो, जिनके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिनके लिए आप दिन भर मेहनत कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करना चाहते हो या अपने आप को उस पोजीशन पे देखना चाहते हो। और एज अ वुमेन, अगर मैं से एक नारी की बात करूं तो वो नारी के जो सपने हैं ना, वो अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। बट अब की जो नारी है वो ये नहीं कहती है, वो कहती है मैं अपने सपनों को भी प्रायोरिटी दूंगी और साथ ही साथ अपने जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी प्रायोरिटी दूंगी, और इनका एक बैलेंस बना के लाइफ में चलूंगी। तभी तो हम उसको कहते हैं कि नारी जो है वो है नारी नंबर वन। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं है आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है।

तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूँगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है, या किसी का खून बहुत ज़्यादा है, या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना, या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना, या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

0: que ruina.
1: एक महिला ना पूरा संसार बदल सकती है, संसार क्या आप सबके माइंडसेट भी बदल सकती है अगर उसने ठान लिया। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो वुमेन की हम बात करने वाले हैं, शी चेंज द वर्ल्ड, नहीं, शी हैव चेंज द माइंडसेट्स ऑफ पीपल। कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो एक लगन है या वो डेडिकेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक अपार्टमेंट में आग लगती है और वहाँ आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। लगभग 70 लोग वहाँ पर फंसे होते हैं। उस बीच में ये एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में काम करने जाती थी लोगों के घरों में, बट वहाँ पर इसने कहा नहीं, मैं आज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो सिर्फ 17 साल की थी और नाम था करीना थापा, और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ये एलपीजी ब्लास्ट था जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी, और ये वहाँ गई और जितने भी लोग वहाँ थे उनको वहाँ से सेफली निकाल के बाहर लेके आई। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की जान इन्होंने अकेले वहाँ पर बचाई थी। तो और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इन्हें बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और ये बाल पुरस्कार उनको मिलता है जिन्होंने छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर दिया होता है जो शायद सोसाइटी के बड़े बड़े लोग भी सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो सोच है ना इनकी, कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, वहां से उनको बचा के लाओ, क्योंकि मैं तो सेफ हुई, मुझे पता है कि कहां से किसको कैसे निकाल के आ सकते हैं क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में डेली काम करने जा रही हूं, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रेवली वहां पर यूज किया और सब लोगों को सेव करके बाहर लेके आई। शी हैव सेव्ड द पीपल, शी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, शी हैव चेंज्ड द माइंडसेट। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

भाई ये चाइना वाले बीच बीच में ऐसी चीजें कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं गुरु, मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चले जाती हैं कभी कभी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और चाइनीज वुमेन्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ के निकाली है, ये कह रही है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी स्किन का और अपना जो लुक है उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे, और ये हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से हम थोड़े से डल डल दिखने लग गए हैं, वर्किंग आवर्स में बहुत इन्वॉल्व रहने गए हैं। तो अब हम वर्किंग आवर्स में ही ये सब करा करेंगे, तो वहां पर काम क्या करेंगे आप, ये डिसाइड कर रहे। कह रही नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम एक फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाए रहेंगे, सनग्लासेस लगाए रहेंगे, हैट लगाए रहेंगे, जिससे जो भी आसपास की चीजें हो वो हमें इफेक्ट ना करें, और ये हम लगा के तब हम काम करेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे हम काम नहीं करेंगे, बट हमें ये सब लगाना अलाउड कर दिया जाए कि हम ये सब लगा के वहां पर काम करेंगे, तो हमारी स्किन जो रूटीन है वो भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ आपका काम भी होता रहेगा। हम आपका काम डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं कह रहे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैसे भी जब हम ऐसे किसी चाइना के इंसान से मिलते हैं ना, मोस्टली फेस वहां पर जो है वो सिमिलर नजर, उसके ऊपर भी आप मास्क लगा लेंगे एक ही कलर के, अगर एक रो में पांच लगा के बैठ गए तो बॉस आके पहचानेगा कैसे कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है, ये इंसान ये है। कुछ तो बॉस के बारे में भी सोचो यार आप लोग। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हो अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल हुआ तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल, वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डेट डेट पे जाइए तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा। और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

एक आदमी को ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने वाले हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अब आप बोलोगे ना वो छोटी छोटी चीजें क्या है। देखिए वो छोटी छोटी चीजें ये हैं कि जैसे किसी इंसान को घड़ी पसंद है तो नॉट बहुत महंगी, बट आप उसे कोई नॉर्मल घड़ी भी ला के दे दोगे ना जब उसका कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे, तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो आप वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको ला के दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए। ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल लेते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था। तो लोग तब लगाते थे, फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: 91.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आज की जो नारी हैं ये भी मल्टीटास्कर हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: हाय तुषार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: बिल्कुल, और ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, मैं उसके बारे में और वहां से ही जर्नी को स्टार्ट करना चाहूंगा। एक लॉकडाउन से पहले, एक लॉकडाउन से बाद, ये दो फेसेस वाली जो स्टोरी है, सबसे पहले तो पहले वाले चलते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री से आप एसोसिएटेड हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल गाइड करना प्लस उनकी जर्नी प्लान करके देना, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कुछ करते हैं?
1: देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री से ही मैंने अपना करियर शुरू किया। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री ही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली मेरे लिए एक शॉक था, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन पे ही अफेक्ट आया था। बंद हो गई थी सारी कंपनी, बंद हो गई, मेरे लिए भी एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी कि ये क्या हो गया है। बट मैं बहुत नेगेटिव नहीं हुई, मैंने कुछ चीजें पॉजिटिव वे में भी किया। मैं फिटनेस से बहुत, मेरा पैशन है फिटनेस, तो मैंने और मेरे अंदर एक ये चीज है कि जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ ना, तो मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ, और इससे मेरा ना स्ट्रेस कम हो जाता है। जब मैं अब जॉब तो थी नहीं, वर्कआउट मैं कर रही थी, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें आई कि व्हाई नॉट फिटनेस, आई कैन गो विद फिटनेस ऑल्सो। तो फिटनेस में मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैंने CPT ट्रेनिंग ली जिसमें सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद मैंने एरोबिक्स ज्वाइन करा, एरोबिक्स की सर्टिफिकेशन की। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी सिचुएशन जब नॉर्मल होने लगी तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट किया, एंड देन जिम में जाके बात की लोगों से,

0: अपनी जो पैशन था वो मैंने अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और अपनी जर्नी यहीं से शुरू कर दी फिटनेस को लेके।
1: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: 99.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये दो अलग है, ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट और फिटनेस इज डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद हम वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ ये दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करके चल रहे हो कि वो भी मैनेज करना और प्लस फिटनेस भी मैनेज करना।
1: देखिए इसमें मैनेज नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को भूल जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत सोचना।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। मुझ में है फ्लैश, तुझ में है फ्लैश, मुझ में है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलोसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है। और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स

0: मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में, आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में रिसर्च करा या आपके बारे में पढ़ा, आप बीइंग अ मदर, आप मदर हैं और उसके बाद आप ट्रैवल इंडस्ट्री प्लस फिटनेस, तो कितना ये मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ ये दोनों चीज़ें भी बैलेंस करनी है। ये आपका स्टार्टअप है, इसे भी टाइम देना है, प्लस फैमिली या जो चाइल्ड्स हैं उन्हें भी उतना टाइम देना है।
2: देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना फिटनेस में शुरू कर दूंगी तो मैं वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊंगी ये मैंने सोचा था क्योंकि वो मेरा करियर है एंड मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो मैंने वापस से ट्राई करना शुरू कर दिया ट्रैवल इंडस्ट्री में। मैंने कंपनी ज्वाइन की बाय द नेम ऑफ TNE, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम इसमें कस्टमाइज करते हैं पैकेजेस एंड हम ग्रुप ट्रैवल्स भी कराते हैं। इधर मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लेके गई, बहुत

0: कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फैमिली, और मैं यही सबको बोलना चाहूंगी कि अपनी फैमिली को आप देखो लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी।
1: 100% मैं यहीं पर, जैसे आप बहुत ज्यादा ट्रैवल उसमें, तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं या लिस्ट में है कि यहाँ एक बार और एक्सप्लोर करने जाना है?
0: मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा भी नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस देखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भेजती है, इवेंट्स मैनेज करने के लिए भेजती है। बट हाँ, मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 पीपल, और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ बताने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मेरे को अगर ट्रैवल करना है तो मुझे यूरोप ट्रैवल करना है, एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल पैरिस, एंड आई वॉन्ट ट्रैवल जापान ऑल्सो, बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज फॉन्ड ऑफ जापान एंड कोरिया, तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहूंगी मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके। You don't wanna settle, you move this.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आज की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अपने पैशन को फॉलो करना, एक प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग कहीं बार हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ से अगर कोई गाइडेंस आज उन्हें देना चाहें।
1: देखिए, मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग होता है, आई नो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सेल्फिश नहीं होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आप अपनी लाइफ को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बच्चे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए सब, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने पैशन को जरूर फॉलो करो, वो बहुत जरूरी है। अपने पैशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो जैसे मैंने लॉकडाउन में किया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया उस चेंज को, मैंने पॉजिटिवली उसको फॉलो अप किया और मैंने अपना फिटनेस में भी करियर बनाया।
0: अभी फिटनेस का हम लोग जो चला रहे हैं वो कैसे सेशंस लेते हैं या कैसे हम अपना डे आउट प्लान करते हैं?
1: देखिए, मैं एरोबिक्स क्लासेस लेती हूँ, आई टेक क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो, आई टेक क्लासेस इन जिम ऑल्सो। हाँ, मेरी पूरा वर्किंग रहता है, लेकिन आई टेक इन मॉर्निंग बैचेस लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो
0: कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेस पे
1: मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद आयुषी, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे शो का नेम है नारी नंबर वन, नारी हर आगाज में आ गया। जैसे आप भी 100 लोगों का एक क्रू लेके जाना, प्लस लॉकडाउन के टाइम एक नई चीज को एक्सप्लोर करना कि मैं इसमें भी एक्सीड कर सकती हूँ, ट्रैवल बिजनेस, क्योंकि हमें मालूम है उस टाइम ट्रैवलिंग पूरी तरह से ही बंद था कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो उस टाइम के वो चैलेंजेस और सारी चीजों को लेके। तो ऐसे बहुत सारी और नारी हैं जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग तरीके से चैलेंज करती हैं। तो जब वो चैलेंज उनके सामने आ रहा है तो उस टाइम उन्हें अपने माइंडसेट को या क्या एक ऐसी पॉजिटिव डोज खुद को देना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव जो आपके लिए मंत्रा रहा हो।
1: देखिए, लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक लेडी के लिए। घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, जॉब करना, घर के काम होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसको पॉसिबल बनाना ना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल तो आता है और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आप वो चैलेंज को फेस करो, आप करो, आप मेहनत करो। थोड़ी सी जर्नी आपकी ज़रूर स्लो होगी, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने के लिए। तो आप यही करिए कि आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे, सेल्फ बिलीव रखेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने के लिए।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल है आप सबके। सुबह से अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे ना, किसी का ऑफिस है, किसी की क्लासेस है, किसी का घर का काम, और किसी को बस यही सोचना है कि आज लंच में क्या खाएं। और इसी के साथ साथ नवरात्रि भी आने ही वाली है भाई, मतलब घरों में अभी से सफाई, शॉपिंग, व्रत के प्लान्स और ऑब्वियसली गरबा डांगे वाले प्लान्स तो अभी से ही बनना शुरू हो गए होंगे, है ना। लेकिन अभी वक्त हो चुका है मेरी बकबक सुनने का, क्योंकि अगले 2 घंटे होंगे म्यूजिक, मूवीज, स्टार्स और ढेर सारी फिल्मी बातें। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।
2: Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद के इंचो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
2: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
1: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
2: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
1: प्लेट्स एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
2: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
1: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
2: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

को एक्शन करते तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन जब खिलाड़ी भैया कॉमेडी मोड में आते हैं ना तो सीन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब उनकी नेक्स्ट कॉमेडी को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि अक्षय कुमार एक बार फिर साजिद के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं और इन दोनों ने 2012 में हाउसफुल 2 में साथ काम किया था और अब लगभग 14 साल बाद ये जोड़ी वापस कॉमेडी के लिए साथ आ रही है। लेकिन इस बार अक्षय के साथ एक और इंटरेस्टिंग नाम है, आर माधवन जी का। केसरी चैप्टर 2 में दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और अब कॉमेडी में साथ नजर आएंगे। फिल्म में श्रिया सरन और दीसा पटनी भी रिपोर्टेडली कास्ट का पार्ट है और ये स्टोरी मिडल एज मैन के अराउंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड एक कॉमेडी होगी। और इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं और शूटिंग लंदन में ईयर एंड या 2027 की बिगनिंग में स्टार्ट हो सकती है। तो अक्षय और माधवन को इस बार सीरियस नहीं बल्कि फुल कॉमेडी मोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड

अच्छा कभी कभी ना प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन इतनी थिन होती है कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाला प्यार कर रहा है या बस पॉसेसिव होता जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन को लेकर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर तू है मेरी किरण, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर में सोनाक्षी है किरण और जहीर है समर, और समर को लगता है कि किरण के साथ उसका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन किरण क्लियरली उसे डिस्टेंस चाहती है, इतना कि फोन ना करने तक को कहती है। लेकिन समर पीछे हटने वाला नहीं है भाई, और यहीं से स्टोरी थोड़ी अनसेटलिंग होने लगती है। कभी जो हो रहा होता है वो रियल लगता है, कभी लगता है कि शायद किरण की रियलिटी ही उसे कंफ्यूज कर रही है। और जैसे जैसे समर का बिहेवियर पॉसेसिव होता जाता है, सस्पेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। मतलब ट्रेलर देख के एक सवाल तो दिमाग में रह ही जाएगा कि जो हम देख रहे हैं ना, क्या वो सच में हो रहा है। और ये फिल्म आपको 23rd of October 2026 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ये फिल्म कितनी मिस्टीरियस होने वाली है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर्स।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी एंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

और अगर आपको रियलिटी शोज में सिर्फ फाइट्स और ड्रामा नहीं बल्कि थोड़ी स्ट्रेटजी, थोड़ा दिमाग और कौन किसके साथ है वाला गेम भी पसंद है ना, तो ये अपडेट बिल्कुल आपके लिए है। प्राइम वीडियो ने अनाउंस कर दिया है अलायंस सीजन 2 और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके लिए आपको पूरा एक साल बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। सीजन 2 14 जनवरी 2027 से स्ट्रीम होगा और कुणाल केमू एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं। और पहले सीजन में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस के साथ साथ अलायंसेस, चेंजिंग लॉयल्टीज और स्ट्रेटजी के थ्रू गेम में टिकना था और इस बार मेकर्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाईर स्टेक्स, शार्पर गेम प्ले और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट होने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स कौन होंगे ये भी रिवील अभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल एक ही सवाल है कि इस बार अलायंस बनेगा या गेम के साथ दोस्ती भी बदल जाएगी, और ये चीज तो 14th of January को ही पता चलेगी। लेकिन अभी वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

कर गई चुल। 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

हॉरर कॉमेडी और मिस्ट्री से ब्रेक लेते हैं और चलते हैं सीधा 90s के बॉलीवुड में। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि जिनके लिरिक्स का मतलब समझने से ज्यादा जरूरी होता है कि बस बीट सुनते ही पैर अपने आप हिलने लगे। और ऐसा ही एक आइकॉनिक नंबर है तम्मा तम्मा लोगे, जो 1990 में रिलीज हुई फिल्म थानेदार का सुपर हिट सॉन्ग था और संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गाना बप्पी लहरी और अनुराधा पोडवाल ने गाया था। और इस गाने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि संजय दत्त को डांस में अपने स्टेप्स माधुरी दीक्षित के साथ मैच करने के लिए रिपोर्टेडली 16 दिन तक रिहर्सल करनी पड़ी थी। कोरियोग्राफी सरोज जी ने की थी और कहा जाता है कि दोनों की टाइमिंग परफेक्ट करने के लिए इस गाने को 48 टेक्स में शूट किया गया। अब गाने की बात मैंने कर ही दी है तो सुनाती हूँ आपको एक गाना, एंजॉय कीजिए ये गाना। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ

0: फ्लेवर।
1: और अब 90s के डांस नंबर से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और अब बात करते हैं कि ऐसी एक्ट्रेस की जिनका स्क्रीन पर आना ही अपने आप में ही एक अलग वाइब क्रिएट करता है। बात हो रही है विद्या बालन की, जिन्होंने तमिल सिनेमा में एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ एंट्री मार ली है और इस बार कनेक्शन भी काफी स्पेशल है क्योंकि विद्या फिल्म मेकर आज बालकी के साथ 17 साल बाद दोबारा काम करने जा रही हैं और दोनों ने 2009 में 5 ऐसी मेमोरेबल फिल्म साथ में की थी और अब एक न्यू तमिल फिल्म के लिए फिर से कोलैबोरेशन हो रहा है और विद्या ने सेट से एक BTS पिक्चर भी शेयर की है जिसमें वो चश्मा लगाए लंबी चोटी में और हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े नजर आ रही हैं। फिल्म का टाइटल, स्टोरी और विद्या का करेक्टर अभी सब सीक्रेट है, बस शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी और विद्या ने कैप्शन में लिखा है न्यू बिगनिंग्स विद आर बालकी। वैसे विद्या का रीजनल सिनेमा की तरफ ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तमिल फिल्म के साथ साथ वो अक्षय कुमार और राशि खन्ना के साथ एक अपकमिंग बॉलीवुड कॉमेडी में भी नजर आएंगी। मतलब विद्या बालन के लिए फिलहाल एक ही रूल है, लैंग्वेज कोई भी हो, स्क्रीन पर प्रेजेंस विद्या वाली ही होनी चाहिए। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब एक ऐसी फिल्म की बात जिसके लिए फैंस काफी टाइम से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अंधाधुन पार्ट 2 कब आ रही है भाई। 2018 में आई आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे स्टारर अंधाधुन ने अपने ट्विस्ट और डार्क ह्यूमर से ऑडियंस को काफी कंफ्यूज भी किया और एंटरटेन भी। अब FICCI फ्रेम्स 2026 में आयुष्मान ने खुद डायरेक्टर श्री राम राघवन से सीधा पूछ लिया कि भाई अंधाधुन पार्ट 2 आप ला कब रहे हो। और श्री राम राघवन का जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि सीक्वल तभी बनाएंगे जब उन्हें ऐसी अच्छी और ओरिजिनल स्टोरी मिल जाए जो पहली फिल्म की स्टोरी को खराब ना करे। मतलब सीक्वल का आइडिया रिजेक्ट नहीं हुआ है, बस मेकर्स शॉर्टकट नहीं लेना चाहते। और ऑनेस्टली अंधाधुन जैसी फिल्म का सीक्वल हो और उसमें ट्विस्ट कम पड़ जाए, ये तो फैंस भी नहीं चाहेंगे ना। तो फिलहाल अंधाधुन पार्ट 2 का वेट जारी है क्योंकि श्री राम राघवन को चाहिए एक ऐसी कहानी जो पहली फिल्म के लेवल का सस्पेंस दोबारा क्रिएट कर सके। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और देखते ही देखते हमारे इस फिल्मी आफ्टरनून को शटर डाउन करने का वक्त हो चुका है। आज थोड़ी बॉलीवुड गॉसिप हुई, कुछ नए अपडेट्स भी मिले। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं, कल फिर मिलूंगी इसी जगह इसी टाइम और एक नए फिल्मी डोज के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

था चमोली उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 4 समथिंग का ये भूकंप था। और एक चीज जो हमें बार बार याद दिला दी थी कि प्रकृति से तेज कुछ भी नहीं है। दिल्ली, NCR, उत्तराखंड और देश के कुछ और भी एरियाज में कल रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग घर से बाहर आए थे क्या आपके घर के आसपास? देखो, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ना, वहां पर ना समझ आता है, वहां पर हिलती है सारी चीजें। हमारा है ग्राउंड फ्लोर, वहां पर कुछ ज्यादा पता चलता नहीं है। और बता दूं आपको कि भूकंप का केंद्र जो था वो उत्तराखंड बताया गया, और अभी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, दैट्स थैंक्स टू गॉड। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भूकंप तो नहीं मगर भूचाल जरूर आएगा। एक ही बात होती है क्या? गानों से गाने चलाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एक से बढ़कर एक। अगले 4 घंटों के लिए मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ। रेडियो का गौरव बोलते हैं, मोस्ट वांटेड मुंडा भी कहते हैं, गौरव भी कहते हैं, जो मर्जी आप बुला लो, बुलाओ तो सही। नंबर है जी मेरा 9654896896। इस पर कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप लोग। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। और जैसे ही कल इंडिया जीती वैसे ही भूकंप आ गया, ये भी तो कह सकते ना, क्योंकि कल मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और गजब का मैच रहा ये। और इसके साथ साथ दुनिया भर में और फरीदाबाद में क्या क्या चीजें अनोखी हो रही है, या फिर क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, सबके बारे में करेंगे बात अगले 4 घंटों में। तो इसी बीच आप लोगों को अगर मुझसे बातें करनी है तो मेरा एक सिंपल सा नंबर है जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बट इसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आकर भी आप मुझसे बात

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी।

0: और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
1: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। आपको पता है एआई बहुत ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है, और अब तो एक बंदे ने बस एआई को ये बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बाद में बात करता हूँ, और वो बस अपना लैपटॉप खुला छोड़ के चला गया। एआई रिसर्चर था, उसने बीमार होकर बिना बताए सोने चला गया। जैसे ही तो दो ऑटोनोमस एआई एजेंट्स आपस में बात करने लग गए। चिंता में उन्होंने 6 घंटे तक खोजबीन कर डाली। टोटल बैक टू बैक 60 मैसेजेस भेज दिए। अब आपको लग रहा होगा ये ऑटोनोमस एआई क्या चीज़ है। देखो, एआई एजेंट्स बनाए हुए थे उसने दो, और उस पर रिसर्च कर रहा था वो, और उसने जैसे ही उनसे बात करनी शुरू की तो वो सब चीज़ों का रिप्लाई दे रहे थे। और इतने में हुआ ये कि एआई एजेंट्स के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई, क्योंकि मालिक ने बोला कि देखो मैं बीमार हो गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, और वो चला गया बिना बताए सोने के लिए। उसने बस इतना बताया था कि मैं बीमार हूँ, सोने जा रहा हूँ, ये नहीं बताया। तो बॉट्स जो थे ना, एआई बॉट्स, बॉट्स मीन्स रोबोट्स, एआई जो एजेंट थे वो फिक्र करने लग गए। उन्होंने बैक टू बैक 60 मैसेजेस भेज दिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि रात के 12:30 बज रहे हैं, 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे से मालिक चुप हैं, मुझे जानना है कि वो ठीक है या नहीं है। तो दूसरा वाला कह रहा है हम दोनों ही हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो हम तुम्हारे तक पहुँचेंगे, हम तुम्हारे पास कुछ किसी को भेजेंगे, प्लीज़ सर एक बार बता दो। ये बोल रहे थे एआई एजेंट्स कि प्लीज़ एक बार बता दो कि आप ठीक हो या नहीं, आई एम स्कैर्ड। और लास्ट मैसेज पता है क्या था? आई लव यू। और ये था एआई एजेंट का मैसेज। सोचिए अगर ऐसी कुछ चीज़ कल को रियलिटी में हो गई, मतलब ये चीज़ रियलिटी में हुई है बट कुछ चीज़ फिजिकल फॉर्म ले ली एआई ने, कल मान लो दोनों के कुछ ज़्यादा ही मतलब नुकसानदायक भी हो सकता है ये, क्योंकि एआई के भरोसे अभी पूरी दुनिया चल रही है और

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

स्वागत है, कैसे हैं आप सब। देखो पता है आप लोगों को, दिल्ली NCR में ना बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हो रखे हैं और हम लोग उनको अक्सर नजरअंदाज करके चलते हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। आप सभी को पता है एक ना वीडियो वायरल हो रही थी और उस वीडियो में कुछ लड़के दिखाई दिए जो सड़क पर गड्ढे देखते ही उसको भर देते हैं और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम भी ये काम करें, बट फिर टाइम का मतलब एक प्रॉब्लम है ना, वक्त का तकाज़ा जैसे कहते हैं, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम लोग ये चीज़ तो कर नहीं सकते। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं आगे, बट वो भी हमने नहीं करा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फरीदाबाद से, बस कुछ आगे चलते ही पलवल अलीगढ़ रोड पड़ती है, वहाँ पर जेन ज़ी ने मिलकर काफ़ी सारे गड्ढे भर दिए। उन लोगों ने मिलकर ये सारे गड्ढे भरे हैं और उसकी पूरी की पूरी वीडियो बनाई है और उसके बाद ये भी बोला अगर हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। खैर ये चीज़ एक पॉइंट है कि जितने भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो लोग ये काम कर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं और जो सड़क के किनारे गंदगी हो रही है उसको साफ़ कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंसर्स कर देंगे तो फिर सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे। और जब भी हम लोग सड़कों पर गड्ढे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए अपने इलेक्टेड नेता से कि सर यहाँ की रोड कब तक बन जाएगी, क्योंकि फरीदाबाद में ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो कि बनाने का वादा तो बहुत सालों पहले हो गया था बट आज तक वो सड़कें नहीं बन पाई है। तो इसके ऊपर आप लोगों की भी अपनी अपनी राय होगी, बट मैं चाहता हूँ आप लोग अंदर से वो जो गुस्सा होता है ना उसको कन्वर्ट कीजिए अपने शब्दों में और शब्दों को बयां कीजिए अपने सिलेक्टेड नेता के सामने और बिल्कुल एक तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से कि सर ये सड़क कब तक बन जाएगी, बस हमें एक अल्टीमेटम दे दीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके
3: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: एक सवाल मैं आप सभी लोगों से करूंगा कि नई गाड़ी खरीदना जरूरी है क्या जब आपके पास ऑलरेडी एक पुरानी गाड़ी है और वो ठीक ठाक हालत में है और वो चल भी अच्छी रही है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। खटारा गाड़ी अगर आपके पास है, मतलब खटारा दिखने में है, चलने में बिल्कुल एकदम चंगी है, तो क्या दुनिया वालों को दिखाने के लिए आपको नई गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या? सवाल है मेरा। और अगर ऐसा आप सोचते हैं कि हाँ जरूरत पड़ेगी, तो फिर शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि खटारा सेंट्रो में एक मैनेजर भी आती थी, पूरा ऑफिस हंसता था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि सबकी थिंकिंग बदल गई। कहाँ का ये मामला? ये एक लड़के ने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई कि हमारी एक मैनेजर हुआ करती थी जो सेंट्रो गाड़ी में आती थी, और 12 साल पुरानी गाड़ी में, और कहते कि उनका सब लोग मजाक उड़ाते थे, मतलब ऑफिस में A to Z, ABCDXYZ सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। देखो इतनी सैलरी होने के बाद भी खटारा सी सेंट्रो में आ रही है, ये वो बहुत सारी बातें बोलते थे। फिर उसके बाद लोगों को पता चला कि 46 की हो गई हूँ, और 46 की होते ही उन्होंने कहा मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों। तो वो पता चला कि उन्होंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि वो अपनी पूरी पूरी लाइफ घर बैठ के खा सकती हैं, और उनको अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि हमने इनकी गाड़ी का तो मजाक बनाया, मगर इन्होंने सिर्फ एक रिटायरमेंट लेकर हमारी पूरी ज़िंदगी का मजाक बना दिया है। तो देखो, उन्होंने ना बचत पर ध्यान दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया, जो एक बहुत बड़ी सीख देता है आज की डेट में हम सभी लोगों को। और इसी से आप सभी को बता दूं कि लोगों को ना उनकी कार से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही हो, जब आप काली स्कॉर्पियो देखते हो तो गाड़ी धीरे कर लेते हो, मगर जब ऑटो वाले को देखते हो तब तो बिल्कुल उसके आगे से कट्टा मार के चले जाते हो, है कि नहीं। चलिए ये तो मजाक था, अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। रेडियो महारानी सुनते रहिए, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं घर जा रही होती हूँ।

0: कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। पता है ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट ज़रूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले। और इसके अलावा तारीफ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं, तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फियर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फियर है, तभी तो माइक के पीछे बैठ के बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही रोज़ाना सपनों को डिकोड करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो

लगातार 10 मैच जीत लिए है टीम इंडिया ने लगातार। सोचो कितनी जबरदस्त टीम है ना, हर जगह जीतती जा रही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और रन चेज में T20 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं श्रेयस अय्यर। कल का मैच देखा या नहीं देखा? कल का मैच वॉज अमेजिंग और इंडिया ने लगातार 10वां मैच जीत लिया है। T20 मैच की अगर हम लोग बात करें तो लगातार 10वां मैच जीत लिया है और हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। देखो पहले तो मुझे डर लग रहा था उनसे, हाँ वेस्ट इंडीज़ वालों से, क्योंकि बढ़िया खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से टीम इंडिया ने हरा भी डाला। 42 गेंदों में शतक लगा लिया किसने? श्रेयस अय्यर ने। इन्हें कुछ और भी कहते हैं, सरपंच साहब भी कहते हैं। और 172 रन का जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 14.4 ओवर में हासिल कर लिया। अब पता है यहाँ पर ना मुझे एक मैच याद आता है, ठीक आज से 10 साल पहले मार्च की वो डेट थी, 31 तारीख वो डेट थी, 31 थी या 2 अप्रैल थी, याद कीजिए उसे, क्योंकि उस दिन टीम इंडिया का फाइनल मैच था T20 वर्ल्ड कप का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया उस दिन हार गई थी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बट अब लगता है कि हाँ बदला तो ले लिया है और भारत ने लगातार 10 T20 मैचेस भी जीत लिए हैं। बट कल के मैच में ना कुछ चीज़ें अमेजिंग हो रही थी, जैसे एक तो छक्के चौके इंडिया की तरफ से ज़्यादा पड़े हैं, उनकी तरफ से बहुत कम पड़े हैं। हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी तरफ से छक्के चौके ज़्यादा पड़ेंगे, बट नहीं, इस बार उल्टा हो गया है। इस बार टीम इंडिया ने अच्छे से छक्कों और चौकों की बरसात कर दी थी। और अगर मैं बात करूँ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की, तो आने वाले भी हैं और भी मैचेस, जैसे कि अभी T20 अगला है 9 अक्टूबर को, यानी कि कल रांची स्टेडियम में, फिर उसके बाद इंदौर में है 11 अक्टूबर को, फिर उसके बाद हैदराबाद में है 14 अक्टूबर को, फिर उसके बाद है बेंगलोर में 17 अक्टूबर को। दिल्ली में क्यों नहीं हो रहे मैच? मुझे दिल्ली में मैच देखना था। चलिए अब जब होंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला देता हूँ। सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी पर गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

करूगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा

0: टेंशन, यू डोंट वांट माय हार्ट। कल क्या था टीम इंडिया की बीट पे? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। ये जो मैंने छोटा सा सवाल किया है ना आप लोगों से कि कल टीम इंडिया की पीठ पर क्या लगा हुआ था, क्योंकि मैंने देखा ध्यान से बॉलर बॉल डाला, नमन साहब हमारे बॉलिंग कर रहे थे और तभी मेरी नजर पड़ी उनकी पीठ पर, कुछ डिवाइस जैसा लगा पड़ा था। नमन 46 नंबर की जर्सी पहने और उनकी पीठ पे, जब जैसे ही मैंने ये निशान देखा एंड आई वाज लाइक शॉक, मैंने कहा ये क्या चीज है। फिर मैंने इसके ऊपर जांच पड़ताल कर दी तो पता चला कि ये ना एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डिवाइस होता है और इसमें GPS भी होता है और ये कंप्रेशन वेस्ट के अंदर पहना जाता है, मतलब कंधों के बीच में, बिल्कुल आपकी गर्दन में जो हड्डी जा रही है नीचे को पीठ की तरफ को, वहीं पर ये डिवाइस लगाया जाता है। इससे क्या पता लगता है? दूरी, स्पीड, एक्सेलेरेशन और इसके अलावा वर्कलोड, ये सारे के सारे आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना टीम का, वो हर खिलाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उनके ट्रेनिंग लोड, इंजरी का रिस्क, ये सब चीज़ें मॉनिटर करते हैं। और इंडियन टीम अभी जो खेल रही थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो सारे के सारे खिलाड़ी स्वस्थ रहें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बस इसीलिए उनकी पीठ पर ये डिवाइस लगा दिया गया था। और ये डिवाइस सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो कल को कोई इंजरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। टीम इंडिया वैसे ही तो है ना 10 मैच जीत रही है, तो सब चीज़ें हो रही है उसी की वजह से 10 मैच जीत रही है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, उन्हीं में से ये गाना जो कि शायद आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौट ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: फरीदाबाद केम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेट्स एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक्स और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।

0: कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

अनस्टॉपेबल तो इस टाइम टीम इंडिया है, और अनस्टॉपेबल हूँ इस टाइम मैं, क्योंकि लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और तड़कती भड़कती अपडेट। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव हूँ आप सभी के साथ। देखो, टीम इंडिया 10 मैच लगातार जीत चुकी है T20I में और अनस्टॉपेबल बन चुकी है, और इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20I मैच के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड रेडी हो गया है। कप्तान तो एक ही रहने वाले हैं, हमारे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया है और 16 लोगों को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी टीम में रहने वाले हैं। बट एक इंसान ऐसा है जिसका नाम मैं चाहता था बहुत टाइम से कि टीम इंडिया में ये इंसान वापसी करे, और वो है नन अदर देन दोनों टाइप में बोल देता हूँ, नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार। और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो रही है, 4 साल बाद हुई है वापसी। और अभी आप सभी को बता दूँ, देखो 22 अक्टूबर को क्राइस्ट चर्च यानी कि न्यूजीलैंड में 5 मैचों की ये सीरीज शुरू होने जा रही है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और न्यूजीलैंड में आप सभी को पता है कि ODI भी होने वाले हैं, और ODI में फिर से कौन खेलेंगे? रोको। बट इसमें एक और खुशखबरी तो सारी की सारी है, बट एक दुख की बात यह है कि आप लोगों को हार्दिक पांड्या खेलते हुए नहीं दिखने वाले, क्योंकि उनको चोट लगी हुई है, अभी फिट नहीं है, फिटनेस पे अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, तो शायद वो नहीं खेलेंगे। चलिए, अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ, और सुनिए इस प्यारे से गाने को।

0: है।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

ओ मेरा डोला नहीं आया, डोला। ओ मेरी सैलरी नहीं आई, सैलरी। ओ मेरे पैसे नहीं आए, पैसे। कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। और सेल जरूर आ गई है सारे प्लेटफॉर्म पर। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? देखो, डोला नहीं आया, सैलरी नहीं आई। अब डोला मींस बाइसेप बोल रहा हूँ मैं वो डोला मींस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सैलरी नहीं आई, ठीक है। पैसे जो उधार दिए थे वो नहीं आए। उसके अलावा शेयर मार्केट में भी कुछ चल नहीं रहा है। सेल आ गई टाइम पे। आज रात 12 बजे से सेल शुरू होने जा रही है। कुछ है बकेट लिस्ट में आप लोगों के? कुछ है आपने जो सेव कर रखा है कि खरीदेंगे, सेल में खरीदेंगे? मत खरीदना, मतलब पैसे तो आने दो पहले। मुझे लगता है, देखो, ऐसा मौसम है ये, ऐसा महीना है ये, जब फेस्टिव सीजन सर पर है, पैसे हमारे जेब में नहीं है और खर्चे बेवजह के बढ़ेंगे, इंपल्सिव बाइंग करने वाले हम लोग की ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, कल को तो मिलने नहीं वाली, तो अभी ले लेते हैं इसे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सेल आ गई है, तो आज रात 12 बजे से सेल शुरू हो रही है, खास उन लोगों के लिए जो कि प्राइम मेंबर्स होते हैं, जो कि एक प्लस मेंबर्स होते हैं। दो टाइप की सेल आती है, मतलब दो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे सेल आती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी डाउनलोड कीजिए, किसी से भी आप लोग, मतलब कुछ भी ऐप डाउनलोड कीजिए और किसी से भी आप लोग सामान मंगाइए, सब कुछ आपके ऊपर है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। हम लोगों की जेब में पैसे वैसे ही नहीं है और फिर उसके बाद सेल आ जाती है, फिर दुख होता है कि नहीं? चलिए, खैर, इन सब चीज़ों के बारे में तो बातें होती रहेंगी, मगर अभी रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूँ आप सभी के लिए ये गाना अंतन, बिकॉज आई एम रियली डन यार। सुनिए इस गाने को, एंजॉय कीजिए। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

क्या आपको मालूम है कि पहाड़ों पर अभी बारिश हो रही है और जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। उसी वजह से दिल्ली NCR में सुबह और शाम को ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ। रेडियो को गौरव कहते हैं, 89.6 सुन रहे हैं आप। एंड फरीदाबाद में अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है। अभी थोड़ा थोड़ा स्मॉगी से लग रहा होगा ना आपको, इवनिंग स्मॉगी, नाइट स्मॉगी, अब तो अंधेरा भी हो गया वैसे। बट ये स्मॉग जो चल रहा है ना, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठंडक सी आ गई है हवा में, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये हवा में भारीपन में टिके रहते हैं। ठंडी हवाएं भारी होती है इसलिए नीचे रहती हैं वो। और अगर वेदर की बात करें तो आने वाले कुछ 4 दिन तक आप लोगों को ठंडक महसूस और भी ज़्यादा होने वाली है। जैसे कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री रहा, वहीं पर कल मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहेगा, और ऐसे ही ये धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। बट यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अभी एयर क्वालिटी 200 के पार चली गई थी कुछ दिन पहले, और अभी इस टाइम वो 200 से भी अंदर है, 150 से भी अंदर है। तो एयर क्वालिटी इज मॉडरेट एयर क्वालिटी, ठीक है, इसमें आप सांस ले सकते हैं। रनिंग करने जा सकते हो आप लोग बाहर, आप वॉक करने जा सकते हो, ब्रिस्क वॉक कीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। तो वैसे ही आसमान में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, पता है लोग क्या लॉजिक देते हैं, लोग कहते हैं अगर हम लोग स्मोक नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हमें परेशानी नहीं होगी, आसमान में इतना स्मॉग है कि हम लोग 20 सिगरेट दिन में पी रहे हैं। अरे 20 तो आप लोग नेचुरली पी रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा क्यों लेके पी रहे हो, एंजॉय करो ना इसी चीज़ को। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया गाने चलाने का एक ठेका ले रखा है मैंने। तो सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सच बताना, इस गाने को सुनकर मतलब वो डांस करने का मन नहीं हो जाता अपने आप ही। वैसे देखा जाए ना तो ये गाना बहुत ज्यादा सैड है, इमोशनल गाना है ये, इश्क तेरा तड़पावे। अब आप लोग इसमें डांस कर लेते हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड ये जो गाना था ना, इश्क तेरा तड़पावे, क्या प्यारा गाना था। बट इसको ना डांस करने वाला बनाया गया है, ये डांस करने वाला था नहीं। और खल्ले मैनो तेरे बिनता हर पल एक तन्हाई दा, मतलब हमेशा तन्हाई सी रहती है और तेरे बिना तो और इस पर हम लोगों ने खूब डांस किया। 1999 में आया था ये गाना और उसके बाद हम लोगों ने कितना डांस किया है इस गाने पे। बट अब जब मैं इसके लिरिक्स ध्यान से सुनता हूँ ना, तब समझ आता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा गमगीन गाना है। रुक ना पावा किया विचो गम दिया बरसात ना, आई कांट स्टॉप द रेन ऑफ सॉरो फ्रॉम माई आईज, और तारे गिन गिन याद विच तेरी मैं ता जागा राता नो, तारे गिनते हुए तेरे को याद कर रहा था और रात भर जागा, और योर लव टॉर्चर्स मी इश्क तेरा तड़पावे। और इसको ना फिर से रीमेक भी किया गया था हिंदी मीडियम मूवी के लिए, बट अभी जो मैंने चलाया था वो ओरिजिनल वाला था 1999 में जो मूवी आई थी उसका। इसका एक गाने की लाइन है, दस से मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा, हाँ मतलब खल्ले मैनू तेरे बिनता हर पल एक तन्हाई दा, दस से मैनू नागिन वांगू मौसम तेरी जुदाई दा, मतलब नागिन की तरह डसता है तेरे से दूर जाना। सोचो कितना प्यारा गाना था ना, हम लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया डांस कर करके। खैर ये गाना जो था डांस किया हम लोगों ने इस गाने पे। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस गाने से ना याद आता है कि बस अब कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो वहाँ तो ये गाना ज़रूर बजेगा, है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक्के।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

आज एक सवाल मेरे मन में आया और ये सवाल ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मतलब देखो, सुबह ठंडा था और कल रात को भी ठंडा था, तो मेरे मन में सवाल आया कि क्या NCR में बर्फ पड़ सकती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। जस्ट इमेजिन, फरीदाबाद में आप सुबह सुबह उठे दिसंबर के महीने में और बर्फ पड़ रही है आसमान में। ऐसा वैसे होने नहीं वाला, बट स्टिल सवाल आया था मन में कि दिल्ली NCR में क्या कभी बर्फ पड़ सकती है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर रिसर्च ही क्यों ना कर ली जाए। देखो दिल्ली में ना काफी बार ऐसा हुआ है कि 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा है, और दिल्ली में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे नीचे भी चला जाए तो भी हमारी जो डेमोग्राफिक जो स्टेट है ना, मतलब डेमोग्राफिक जो स्थिति है उसकी वजह से, और मौसम के भी बहुत सारे कारण होते हैं उसके चलते, दिल्ली में कभी भी बर्फबारी हो ही नहीं सकती। अब देखो IMD ने बोला कि बर्फबारी के लिए क्या होता है, बादलों की ज़रूरत होती है, और दिल्ली में बादल रहते भी हैं नो डाउट, बट ये हीट को रोकते हैं। मतलब जो सर्दियों के टाइम जो आप बादल देखते हैं ना, काफ़ी बार ऐसा भी होता है स्मॉग होता है, स्मॉग के बाद फिर ऊपर बादल होते हैं, वो हीट को रोकते हैं। और दिल्ली में 0 से नीचे तापमान जाना बहुत ज़्यादा रेयर है, तो इस वजह से बारिश तो होती है बट बर्फ नहीं पड़ती है। और आप सभी को याद होगा साल 2018 जब बहुत सारे ओले ओले पड़े थे पूरे दिल्ली NCR में, और फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद पूरा का पूरा बर्फ वाला हो गया था। इतनी ज़्यादा ओले पड़े, इतने ओले पड़े और वो जम गए थे सड़क पर, ऐसा लग रहा था अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हाँ, एक तरीका है जिससे दिल्ली NCR में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, वो है AI। बट मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा AI पे वीडियोस ना बनाया कीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करता है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, और आज जैसे मैंने बोला था आप लोगों को गाने बहुत सारे चलाऊंगा, तो उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: से चोरी चोरी बातें कर रहे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे।
1: माझे चाशनी तू माझे खास, मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी, बोले लो किस्मती बोले आज नहीं बनो।

0: कभी आप लोगों ने सपने में अपने आप को फेमस होते हुए देखा? मतलब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, सब दुनिया आपको जानती है और सब आपके सामने हाथ हिला रहे हैं, हेलो हेलो हेलो। रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। पता है ऐसे सपने ना हमेशा साइकोलॉजी, हमारी जो डिजायर्स होती है, ख्वाहिशें जिन्हें हम लोग कहते हैं, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े होते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड देखो, सपनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो इस टाइम हम लोग सपनों को डिकोड करते हैं रोज, तो सपनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, बट ज़रूरी ये भी नहीं कि वो सच ही ना हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कभी देखते हो अपने आप को सपने में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुके हो, लोग आपको जानते हैं, तो मतलब यही है कि आपकी लाइफ में आपको चाहत है कि आपको हर चीज़ में अप्रिसिएशन मिले। और इसके अलावा तारीफ़ की चाहत है आपके अंदर, या फिर वैल्यू, आपकी कहीं पर वैल्यू नहीं हो रही ना, तो ये सपना दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट और स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, अपने ऊपर आपको भरोसा होगा अगर, तो ऐसे ही सपने आपको देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत है और आपका सक्सेस की तरफ एक कदम और हो जाएगा। यानी कि आप अपने गोल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कामयाबी पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों को ना पूरी ज़िंदगी भर अटेंशन मिलती ही नहीं है, वो या तो अकेलापन फील करते हैं या फिर इग्नोर महसूस करते हैं। तो ऐसे सपने ये भी दिखाते हैं कि आप भी शायद ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। अब देखो, सपने के सिचुएशन के हिसाब से मतलब होते हैं। अगर आप फेमस होकर खुश थे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये दिखा रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसके अलावा अगर आप फेमस होकर भी दुख थे, परेशान थे या फिर डरे हुए थे, तो मतलब यही है कि आपको रियल लाइफ में भी लोगों के जजमेंट से डर लगता है। तो देखो, कभी भी पब्लिक फियर तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को मैं बोल रहा हूँ जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक फियर है, तभी तो माइक के पीछे बैठ के बात कर रहा हूँ। चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही रोजाना सपनों को डिकोड करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आरजे गौरव इन द हाउस, प्यार से रेडियो को गौरव बोलते हैं, एंड एके आका आकानी एके जिम ब्रो, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और हल्की सी इंजरी हो जाती है, बैक में पेन आ गया, कंधे में पेन आ गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा और कर लेते हैं, बाम लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। तो आप सभी के साथ जिम ब्रो है और जिम ब्रो आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज, पेन के थ्रू हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और उस मूवमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना है जिससे इंजरी हुई है। और एक सेट करके देख लेता हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको कि एक सेट करके देख लेता हूँ, क्या पता इंजरी अब ठीक हो गई हो, नहीं नहीं नहीं नहीं, जब तक पेन पूरी तरह से नहीं जाता तब तक आपको ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा इंजरी को कंपेंसेट करने के लिए फॉर्म ख़राब करने वाला वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना, जिसमें फॉर्म ख़राब हो जाएगी तो और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। और पेन किलर्स लेकर पेन को मास्क करके हैवी ट्रेनिंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और सिर्फ इसलिए सेम रूटीन पर वापस मत जाना क्योंकि पेन थोड़ा कम हो गया है, जब तक पूरी रिस्ट नहीं मिल जाता तब तक बिल्कुल भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। अब देखो पहले क्या करना है, पहले इंजरी की आपको सिवियरिटी देखनी है,

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है, मिर्जापुर द मूवी। अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लड़की थी
4: आज इस पंजाब

0: पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी खराब चल रही हो या फिर बहुत ज्यादा खराब चल रही हो, बट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर आ जाता है डेली बेसिस पे जो कहता है, भाई तेरे तो मजे ही मजे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? ऐसा होता है ना, काफी बार हम लोगों को लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये खराब है, वो खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मजाक में भी कभी ऐसा अपने लिए मत बोलना, ये मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, भगवान ना ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है और उसके बाद भी हमारी कंप्लेंट्स रहती है। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास छत नहीं है, उन लोगों को भी देखो जिनके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं है, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को देखो, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल रही है? क्या आप ठीक से चल पा रहे हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप खाना टाइम पर खा पा रहे हैं? तो से थैंक्स टू गॉड, हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं हम अपने से नीचे वाले को भी देखें, ऊपर वाले को देखें। ऊपर वाले को ज़रूर देखो, जो आपसे अच्छी पोजीशन पर है उसको देखो, मगर सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होने के लिए कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा है। आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। गीता जी में भी लिखा है कर्म कीजिए, क्योंकि बिना कर्म करे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने बारे में गलत कभी भी नहीं बोलना है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम रिच। मैं अक्सर अपने आप में बोलता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कैसा है, मैं बोलता हूँ हैंडसम हूँ। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें बोल सकते हैं अपने बारे में। कोई पूछे कैसा है, बोल देना अमीर हूँ, क्या पता जल्दी हो जाओ। तो ऐसी ऐसी बातें बोली अपने बारे में। और देखो, आज का ज्ञान मुझे लगता है यहीं पर खत्म करते हैं, और रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए, क्योंकि बातें और गाने तो चलते रहेंगे, और उसी में से आप सभी के लिए ये गाना MC Square की आवाज में लाडो। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ। मिलूंगा कल शाम को 5 से 9।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

रात के 9 बज चुके हैं और अब शायद दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा वक्त अपने लिए है और मुझे लगता है रात का ये वक्त ना बातचीत के लिए सबसे सही होता है, क्योंकि दिन में हम कितने ही कामों में उलझे रहते हैं लेकिन रात होते होते दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर कुछ बातें अपने आप याद आने लगती हैं। शायद कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन, शायद किसी का आज आया हुआ मैसेज या फिर किसी एक ऐसे इंसान की याद जिससे आज बात तो हुई लेकिन जितनी करनी थी उतनी नहीं हुई। और यहीं से शुरू होती है वो बातें जिनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है। सो हेलो एंड वेलकम टू इश्क बाजियां सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और अब वक्त है मेरे पहले सेगमेंट इश्क शायराना का, जहां हम सिर्फ शायरी सुनेंगे नहीं बल्कि शायरी के पीछे छुपी उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज प्यार करने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, रिश्तों के नाम बदल गए हैं, लेकिन किसी के एक मैसेज से चेहरे पर स्माइल आ जाना, किसी की आवाज़ सुनकर मूड थोड़ा बेहतर हो जाना और किसी के साथ बिना किसी खास टॉपिक के भी घंटों तक बात करते रहना, ये चीजें शायद आज भी वैसी ही हैं। तो आज की रात थोड़ी बात होगी आज के रिश्तों की, आज के जनरेशन के प्यार की और उन छोटी चीजों की जिन्हें हम अक्सर कैजुअली ले लेते हैं। और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ और लौटेंगे इस गाने के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: फरीदाबाद गेम छो नवरात्रि के लिए रेडी छो,
1: क्योंकि इस बार सिर्फ गरबा नहीं कुछ रंगीलो होने वाला है।
0: दिल से दोस्ती क्लब लेकर आ रहा है एक यादगार शाम, जहां बीट्स होंगी देसी, स्टेप्स होंगे क्रेजी और मस्ती होगी फुल ऑन धमाकेदार।
1: नाम याद रख लो, रास रंगीलो, 9 अक्टूबर शाम 6 बजे से।
0: प्लेस एंड प्लेटर्स, ग्रेटर फरीदाबाद में।
1: तो पहन लो अपने फेवरेट ट्रेडिशनल आउटफिट,
0: उठा लो डांडिया स्टिक और तैयार हो जाओ एक रंग बिरंगी नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए। रास भी जमेगा, रंग भी चढ़ेगा।
1: रास रंगीलो, दिल से दोस्ती क्लब के साथ।
0: फरीदाबाद तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए। ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब लेकर आ रहा है जलसा 5.0, एक खूबसूरत शाम सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट और टुगेदरनेस के नाम। और इस खास इवेंट के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके, हेल्थ पार्टनर अमृता हॉस्पिटल और को स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल स्वीट पार्टनर जनता प्रीमियम स्वीट्स एंड बेकर्स, सेक्टर 16 फरीदाबाद। साथ ही वेन्यू पार्टनर है गोपाल वाटिका। इस शाम का मजा और बढ़ाने के लिए होंगे लाइफस्टाइल एग्जिबिशन, डिलीशियस फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। और सबसे खास बात, एंट्री बिल्कुल फ्री है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए। तो मिलते हैं 11 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से एक शानदार और रंगों भरी शाम में जलसा 5.0। कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल इवनिंग।

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और एक बात अक्सर आपने नोटिस की होगी कि हम बात तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते। हमारे जनरेशन के पास कम्युनिकेशन की कमी बिल्कुल नहीं है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कॉल्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, हम किसी को भी कभी भी रीच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बात बहुत करते हैं लेकिन कहते बहुत कम है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना खाया। हाँ, कैसा था दिन? ठीक था। और कॉन्वर्सेशन खत्म। लेकिन उसी इंसान से अगर एक रात अचानक बात निकल जाए तो फिर वो दो घंटे पता ही नहीं लगता, क्योंकि शायद हमें हर रोज़ बात करने वाला इंसान नहीं चाहिए, हमें वो इंसान चाहिए जिसके साथ बात करना मीनिंगफुल लगे। और आजकल रिलेशनशिप्स में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगती है, हम सब कनेक्शंस चाहते हैं लेकिन वल्नरेबिलिटी से थोड़ा सा डरते हैं। हम किसी को अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बोलने में हेजिटेशन फील होती है कि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि शायद आज के वक्त में फीलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फीलिंग्स दिखाने से। हम आई मिस यू कहने की जगह एक रील भेज देते हैं, टेक केयर की जगह स्टोरी पर रिएक्ट कर देते हैं, और मुझे तुमसे बात करनी है की जगह लिख देते हैं फ्री हो। लेकिन प्यार की भाषा शायद अब भी वही है, बस हमारे तरीके थोड़े से बदल गए हैं। तो इस बदलती हुई भाषा को आज हम समझेंगे इस गाने के थ्रू। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं. गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और एक कहते हैं ना कि किसी को पसंद करना और किसी को चुनना, आपने कभी नोटिस किया है आजकल किसी को पसंद करना कितना आसान है? किसी की प्रोफाइल अच्छी लग जाती है, उसकी बातें अच्छी लग जाती हैं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है और बस थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन किसी को चुनना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पसंद तो आपको बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन जब बात किसी एक इंसान की आती है ना, तो फिर आपको सिर्फ उसकी अच्छी बातें नहीं दिखती, उसका बिजी होना भी दिखता है, उसकी छोटी छोटी आदतें भी दिखती हैं, उसके मूड स्विंग्स भी दिखते हैं, उसकी अपनी दुनिया भी दिखती है। और फिर भी आप कहते हैं हाँ इसी इंसान के साथ मुझे रहना है। शायद यही फर्क है अट्रैक्शन और लव में। और इसी बात पर जॉन एलिया साहब का एक शेर मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या खूबसूरत बात कही है ना, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, इतने चेहरे हैं, इतनी कन्वर्सेशंस हैं, लेकिन दिमाग बार बार जाकर एक ही इंसान पर रुकता है। और आज के वक्त के लिए शायद ये फीलिंग और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम किसी से बात बंद कर दें तो कोई दूसरा मिल सकता है, किसी की प्रोफाइल पसंद नहीं आई स्वाइप कर सकते हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा दूसरी कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक इंसान का कैसे हो बाकियों के इस मैसेज से ज्यादा अच्छा लगने लगे, तो शायद मामला सिर्फ पसंद का नहीं है। कुछ लोग ऑप्शन नहीं होते, कुछ लोग प्रेफरेंस बन जाते हैं। मुझे लगता है प्यार की खूबसूरती भी यही है कि हजारों लोगों के बीच भी आपके दिल को एक आवाज थोड़ी ज्यादा अपनी लगने लगे। तो आज की रात अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक शख्स है जिसका नाम आते ही आपकी अटेंशन अपने आप उधर चली जाती है, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शायद शायर ने आपकी सिचुएशन बहुत पहले लिख दी है। और अब उसी एहसास के साथ एक और खूबसूरत गाना, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज है इश्क में जगह बनाना। और आज के इश्क शायराना में जाते जाते एक बात, हम प्यार को अक्सर बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स में ढूंढते हैं, फ्लावर्स, डेट, सरप्राइजेस, लॉन्ग ड्राइव्स, लेकिन कभी कभी किसी इंसान का आपकी जिंदगी में होना इससे कहीं ज्यादा सिंपल होता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपके हर डिसीजन में अपना ओपिनियन नहीं थोपता, आपके हर खाली वक्त पर अपना हक नहीं जताता, बस आपकी जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह बना लेता है। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा, ये इंसान अब मेरी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। सुबह कुछ हुआ तो उसे बताना है, कुछ फनी मिला तो उसे भेजना है, कोई अच्छी खबर मिली तो सबसे पहले उसी को बताना है। और फिर एक दिन रियलाइज होता है, प्यार शायद वो नहीं था जब पहली बार बटरफ्लाईज हुई थी, प्यार तो शायद वो था जब उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में नेचुरल हो गई थी। आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए किसी ग्रैंड मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जॉनीलियस आपका एक और शेर है, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें पूरा रिश्ता छुपा हुआ है। एक तरफ रूठने की आजादी और दूसरी तरफ मनाए जाने का भरोसा। और शायद आज के वक्त में हमें एक ऐसा ही रिश्ता चाहिए जहां आपको हर वक्त परफेक्ट बनने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़ा रूठ सकें, आप थोड़ा नखरा कर सकें, कभी अपने मन की बात ना कह सकें, और शायद सामने वाला फिर भी समझने की कोशिश करे। क्योंकि हेल्दी लव शायद वो नहीं जहां कभी कोई नाराज ही ना हो, हेल्दी लव शायद वो है जहां नाराजगी के बाद भी दोनों को पता हो कि हम इस बात को ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है यही भरोसा भी किसी रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आपको हर वक्त अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आप थोड़ा सिली हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा चाइल्डिश हो सकते हैं, आपको सिर्फ प्यार नहीं मिला है, आपको शायद एक ऐसी जगह मिली है जहां आप खुद हो सकते हैं। और शायद इश्क की इससे खूबसूरत डेफिनेशन और कोई नहीं। मैं हूँ इश्क वाली गीत और ये था आज का इश्क शायराना। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात अभी बाकी है तो इश्क की बातें भी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

फ़ंसिया। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

बाजियां। एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 9.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

इसी गाने के साथ स्वागत है शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

बाजिया। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना, यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने के बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े, माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में ही वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं,